कलवेसूरे पूर्ण पुरख अच्युत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नवनिद सिद्ध रिद्ध दिनी करते तोट न आवै काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई निखुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे दुख न नेड़ा आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी

विचारे गावण तुदनो जति सती संतोखी गावण तुदनो वीर करारे गावण तुदनो पंडित पढ़ नरखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावण तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग।

रे मन चितवे उद्दम जा आहर हर जियो परिया सैल पत्थर मह जंतु पाए ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे महादाव जी सत संगत

स्वीकार तिसे ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रण को पलमो बद कियो

कहत सदा शिव निरंकार का चीन तन पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुए तेती। तुमरा लखा न जाहे पसारा केह बिद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी उतपुज खान बाहर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हव बैठा कहूँ सिमट पयो संग।

व्रत परिया, चौन चौन सत्र हमारे मरिया, देग तेग जग मैं दऊ चल्ला, राख आप मुहे

प्रथम धरो भगवत को ध्याना, बहर करो कविता बिदनाना। किशन जथा मत चरतर उचारो, चूक हुए

समेत चौपाई जो एक कथा सुने अर गावे दुख पावत है निकट न आवे। मिशन भगत की

आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सात सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटह जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होवा

जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन धन आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र अजूरे जुड़ बैठी साध संग जी विभागे हो आप जी संध्या दाना विच हाजरियां भर रहे हो। आप जी ने सोदर रहरा साहब जी दे पाठ अरदास बेनती पितर हुकम सरवण किए हैं आवन कीर्तन की शाम की दीवान की रमता राही कीर्तन की रमता हो रही है। कीर्तन राही जुड़ना करो जी। आने वाली 21 नवंबर दिन शनिश्चरवार गुरुद्वारा साहब विखे अमृता बाटा तैयार हो रहा अमृत संचार हो रहे हैं। जिन्हां प्राणियों ने गुरु वाले बनना है अपने नाम लाइब्रेरी लिखा सकते हो जी। अमृत दात नाम की दात प्राप्त करके जन्म सवेला करो।

पिछले गुनाह सब बख्श लिया, गुर के चरण हृदय बसाए मुड़े, पिछले गुनाह सब बख्श लिया। सात संगत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग दसा ही पातशाहियां दी जोत सर्बसांझी वालता दे प्रतीक शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र पावन हजूरी विच सुशोभित बहुत ही आदरणीय गुरु स्वरूप सात संगत जी बहुत वडभागे हो गुरु चरणा विच बराज के गुरु सवारियां तों गुरबाणी दे मनोर कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त कर रहे सो। सतगुरु जी दी महान बख्शिश आप संगत दी आसीस सदका ए जो आसा राग विच तीजे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी दी खास बाणी दी विचार आपा आरंभ कीती सी। सात संगत जी पहली तारीख तों उस दी विचार करदे करदे अज असी इस बाणी दे जो कुल 18 बंद ने उहदे विचों 15वें बंद दा पाठ सरवण कीता है। 16वां 17वां ते 18वां ये बंद विचारधीन ने। सो ये बाणी दी विचार थोड़ी जी मैं बेनती कर दिया, मेरे कोल हुण चंद कु दिन बचे ने, मोरली वीकेंड तक मैं तुहाडे चरणां च सेवा करनी है, फिर चाले पा देने ने। तो जिवें तुसी इत्थे नितनेम नाल आउंदे हो, कुछ इस तरह होर गुरमुख भी ऑनलाइन जुड़दे ने, कुछ दो तीन सिंघ उत्थे कैनेडा ने जिहड़े, वह जिथे किते मैं विचार करना वा ते वह उत्थों चुक के ते उन्हां एक यूट्यूब बनाया होया उहदे ते पांदे ने। वह मैनू कहन लगे भी ज्ञानी जी एक बेनती है, जे तुसी गुस्सा ना करो इदां, उन्होंने फोन ते गल, मैं नहीं गुस्सा कादा करना, तुसी दसो। वह बेनती ये आ भी एक एक बंद करो। तो ज़्यादातर वह कथाकार सिंह ने जिहड़े अजे तुरे हुंदे ने, ते उन्हां नूं ये हुंदा भी असी जे किते करनी पए ते थोड़ी जी सानू, वह मैनू कहिंदे हुंदे भी तुहाडा तरीका सरल है, सानू सौखा समझ आउंदा है, कोई बहुत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਊਬ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਮਕਾਇਆ ਸੀ।

सत्संग सतगुरु मेहर राम करे, सतगुरु दया करे, सतगुरु कृपा करे, रहमत का मीह वरसावे ते सानू अपनी सेवा विच अपने सिमरन में ला लवे। ऐसी अरदास सारे करया करो, सतगुरु नाम दी दात बख्शे, साडा जीवन सफल हो जावे, साडियां घड़ियां साडे सवास जिहड़े अजाई जा रहे हन ये सफल हो जाए। असी अपने जीवन दियां चंद घड़ियां चंद मिनट सतगुरु जी दे लेखे ला दईए, क्योंकि असी जीवन में सारा जीवन कमां कारां विच ही उलझे रहिंदे हाँ। परमेश्वर का भजन करन दा साडे कोल समा नहीं, असल विच इह मनुखा जामा ते प्राप्त हो भजन करन वास्ते होया। सो सतगुरु मेरा अमृत करे सारिआं नूं, गुरसिखी नाम की दात बख्शे। इस तरह तुसीं जुड़ के गुरु की कीर्ति करते रहो, गुरु की कीर्ति सरवण करते रहो, अपने सवास सफले करते रहो। आओ नन साहब पढ़ के आप दीवाना की समाप्ति करेंगे।

यह सुख मांगा मोको कर संतन की तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो दया कर।

रह चले। जह मुस्कल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुना चरण करत नहीं तरे, हर को नाम को पा हर को नाम कोड पाव पर हरे। गुरुमुख नाम जप मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परे, हर का नाम जपत निहतर है। अनक माया रंग देख ना बुझावे, हर का नाम जपत आगावे। जिह मार गिह जाते केला, तह हर नाम संग हो तु सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई।

बाहर पे खंतर मरमाया श्या पछे नाहे काशे करे छिपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुवान अंतर अग्न बाहर तन स्वाह गल पाथर कैसे तरे अथाह जाके अंतर बसे प्रव्याव नानक ते जन सह समाध सुने अंधा कैसे मार्ग पावे कर गह लेहो और निभावे कहां बुझारत बूझ जय डोरा ने सही है तव समझ जय भोरा।

दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कह है जे प्रसाद सुनहे करन लाद जे प्रसाद पेखे विस्माद जे प्रसाद बोलहे अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है

सह साधक संग बसे थान उचे साधु कै संग महल पहुचे साधक संग दिले सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै गुरबान साधक संग सब कुल उदाहर साध संग साजन उमीद गुटम निस्तार साधु कै संग सब तन पावे जिस तन ते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुरदेवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध के संग नहीं कस काल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलुगत हरे साध के संग नरक पर हरे साधक संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछरुत हर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध कै संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसे नानक उदरै साध सुन रसै साधक संग सुनोहर नाव साध संग हर के गुण गाव साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निहतरै साधक संग लगे प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट मीठा साध संग पै अंग्यकारी साध संगत पै

से ब्रह्म संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम धार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परिवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सह जागत ब्रह्म ज्ञानी बुद्ध आगत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सह निवास नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता

मंत्र सर्व को ज्ञान चहु वर नाम है। जपै को नाम जो जो जपै तस की गत होए, सात संग पावे जन कोए।

खाव खाव मरे, बिना संतोष नहीं को राजे, बिना संतोष नहीं को राजे। सुपन मनोवर्थ वृथ सब काजे, नाम रंग सर्व सुख हो बड़े भागी।

एक सोय आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बखसंद सात रेकी चरणी पाव नानक कै मन एहुन राव मन सब पूर्ण सरना जोग जो कृपाया सोई होग हरन भरन जा काने त्रिफोर तिसका मन तरना जाने हो रे अन्द रूप मंगल सद जा कै सर्वथोग सुनिय कर ता कै

पेटत संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुन कर बचन करन आगाने मान संतोख आत्म पतिया ने पूरा गुरु ख्याओ जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख है हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तह लय मिलावे जिस भावे कुष्ठ दृंग सत पुरुख पूर्ण वेख

धनवंत कुलवंत पतवंत जय जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत दराया जन आमन कह सुहाओ जन कह संग चित आवे नाओ।

जस कीरत जगने जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत तबल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया ईसर ब्रह्मा इंद सुनया मुख सालाहन मंद सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया सास सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सत्संतोख ज्ञान सुनया अड़सठ का इशनान सुनया पड़ पड़ पावै मान सुनया लागे सहज ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया शेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावे राह सुनया हाथ वे सगाह नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का

मन को है। पांच परवान पांच प्रधान पंचे पामे द्रगे मान पंचे सोहे हे दर्रा जान पंचा का गुर एक त्या।

तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख अलवट त्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख नंदक सिर करह पहर, नानक नीच कहा विचार, वारे अना जावा एक बार, जो हो तुद पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत रंकार। असंख नाम असंख थाम, अगम अगम असंख लो।

सद्गुरु मान जाओ रहाओ काया रंगण जेथिये प्यारे पाइये नाओ मजीठ रंगण वाला जे रंगाय साहिब ऐसा रंग ना डीठ जिनके चोले रतड़े प्यारे

कहो नानक की अरदास आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामण कंत पावे आपे ही रावे आपे साजे आ

गुरु एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पात साहि दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोविंद नाव सिमरव श्री हर राय। श्री हरि कृष्ण ते आई है जिह जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वण के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमजिठ कीता। तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए। गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी सिदक के सां सुवासां संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई

संत प्रताप समासन का संग पागे पाई संत के सेवा नाम त्याई है नाम तुल का छवर न हो नान गुरमुख नाम पावे जन को स्वरोग बहुत सा सर्व सिमरते पे कह सर्व टोल पूज सुनाही हर हर नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खाट शास्त्र सिमरत वख्यान योग अभ्यास करम धर्म करया सुगल त्याग मन मध फिरया।

नौ खंड पृथ्वी पर चरती वे मावदातपी सुरति वे अग्नमय होमत परान कनक स्वभावर पुंदान न्यौली कर्म करे बवा संजर मारे संयम साधन कृम कर से गटावे तो पी हो में बैल न जावे हर के नाम संसर कथ ना है नान गुरमुख नाम जपत कत पा है मन कामना तिर दय छुटाय कर घुमाना मत हुटाय शोध करे दिन सर रात मन की मैल न तंते जात उस दही को बो साधना करे मन ते कब न बिख्या टराय जल तो है बो दे अनित शोध का वे का चिपित मन हर के नाम की मैं माऊच नानक ना उधर पत बहुच बहुत सियाण जम का पो बेअप जतन कर दृ सन्ना त्राप बेखने का गन्नी भुज गोट पाप दरगनी सिजय छोड़ सुना ही ओ प्याल मो बेअप माया जाल अवर कर तू सगली जमना ने गोविंद भजन बिंतल नहीं माने हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले स्वाय सुभा चार पदार्थ देखो मांग साजना की सेवा लागे जेको अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जेको अपनी शोभा लोरे सा संग हों में छोराय जेको जन्म मरण ते डराय सा जना की सरणी पराय जे जनको प्रभ दर्श प्यासा नारे तांके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सा संजा कमटे अभिमान पद को जो जाने नीचा सौगनी सब चय ऊंचा जका मन हो सगल के रे न हर हर नाम तन कट कट जीना मन अपने देवरा मिटाना बेख सगल श्रेष्ठ साधना सुख दो

कवन जान सुकोय सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया स्वास संग दुर्मत मल हरिया सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जय कट बसे हर नाम सलोक निर्गुण आर्य अन्या सो प्रभ सदा सुमाल जन किया तुत रख नानक नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कौन मूलते कौन दस्ताने जिन तो साज सवार स्वीकारिया गर्भगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिद प्याओ पर साग सैन मुख प्याओ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बुझे बुसलो तव नान दे प्रसाद धरियो ओ पर सुख बस है सुत बरात मीत बनता संघस जय पर साई पीवें से चल जला सुखदाई पवन पाप कामुला जय पर सा भोग सब रसा सगल समग्री संग सास बसा दीन हस्त भाव करने तरसना तसे त्याग और संग रचना ऐसे दुख मुड़ंद व्यापे नान काण लियो प्रभ व्यापे आदंत जो रख नहर तिसो प्रीत न करे गवार जा की सेवा नवनत पावे ता सो मुड़ा मन निलावे जो ठाकुर सा सदा हजूरे चंकु अंदा जान तुदूरे जा के टहल पावे दरगा मान तुसे बिसार मुदे जान सदा सदा ये भूल नहार नानक राख नहार अपार रतन त्या कौडी संग रचै स्वाच छोड़ झूठ संग मचै जो शरणा सुअसर कर मान जो होवन सो दूर पराने छोड़ जाए तिसका श्रम करय संग सहाय तिस पर हरय चंदन लेप उतारे तोय गर्त प्रीत वसम संगोय अंधकुम में पद बिकराल नान काल लियो प्रभ दयाल करतुत पशु के मान जा लोक बचारा करे दिन रात बाहर पे खंतर मल माया छप सनाय कज करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतरगन बाहर तन स्वाओ कल्पा

दीन बेनती करा नानक तुमरी कृपा धराय। संग साई सुहावे न चीज जो बैराई तां सुप्रीत बलवै के कृपा पितर बसे रंद केल मै रंग रसै दृढ़ कर मन प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत।

यस्पति दस वस्तु ले पाछे पावे एक बस कारण बैकोट गवावे एक पीना दे दस पी हर ले तो मुड़ा कहो कहा करे जे ठाकर सो नाही चारा ताको कि जय सदनम सकारा जाखे मन लागा परमेठा सर्व सोगता हो मन उठा जिस ने अपना हुक्म नाया सर्व सोग नानक तिन पाया अगंत सा अपने देरा काल बित बरते आनंद उलास अपने मन कछ बार साले अज्ञानी मन रोष करे अपनी भरती सा भेखो वे बरस का विश्वास न हो वे जिसके बस सा गह रखे प्रभु की आज्ञा माने मत है उससे चौगन करे निहाल नानक सायु सदा दयाल अनक पात माय के है सर्प हो जान अनित बिरखि चाय सुरंग लावे बिन छ मन पछतावे जो दुसा सुचारण हार लपट रहे चैन दंडार बटाओ सो जो लावे न ताके हाथ न आवे के मन हर के नाम किर पर सुखदाई कर कृपा नानक अपले लाई मिथ्या तन धन कुटम सुभाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजो बंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ति असभ असरा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान अचर भगत साध के स्वरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या स्वरण पर निंदा सुनया मिथ्या हस पर दर्भ को हरिया मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन सुवाद मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या धन्य पर बकारा मिथ्या बास ले बेकारा बिन बुझे मिथ्या स्वप सफल दे नानक हर नाम ले व्यर्थ सकत की आरजा सच बना कहो असुचा बृथा ना बिना तन अंध मुखावत दुर्गन बिन सिमरन तिंद्रायन बृथा बेहाय मेघ बिना झुके ती जाय गोविंद बदन में व्यर्थ सब काम ज्यो कृपण केन्द्रार्थ धाम धन धन ते जन जे कट वस्योर नाओ नानक तंक बल बल जाऊ रह तवर कछवर कमावत मन प्रीत मुखो गण लावत।

आप जप जप सोए आप जपाए जप सुनाओ आप गवाए स्वर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हो प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए श्रम धान प्रभु तेरी मैया आपका आप हो कछु न किन्हु लाया

बृहस्पति साधक संघ उज्ज्वल होत सा संघ मल सगलिक होत साग संघ उठे अभिमान साग संघ प्रकट सो ज्ञान साधक संघ बुद्धे प्रभ नेरा सा संघ सब होत नवेरा साग संघ पाए नाम रतन साग संघ एक ऊपर जतन साधक महिमा वर्ण कौन पराने नानक साग शोभा ब्रह्मा सुमाने साग संघ गोत्र मिलाय साग संघ सदा पर फुलाय साधक संगा वह बस पंचा सा संग अमृत रस पुंचा सा संग सब की रैन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतुम तावाय सा संग सच मन पावा साग संग माया चय पन्ना सा संग नानी प्रभ सो प्रसन्ना

ज्ञान सा प्रभु बनाए साग संग न कत्म कब होता वै साथ कह संग सदा सुख पावे सा संग बस गोचर लह साधु के संग अजर सह साग संग बस थन ऊचै साधु के संग महल पहुचै।

बहुत निहाल। साज का संग लोखत हर साग संग नरक पर हर साग संग इहां उहां सोहेला सा संग बिचर थर मेला जो इच्छा सोए फल पावे साग संग ना बिरथ जावे पार ब्रह्म साध रस बसै नान गुदर साध सुन रसै। साज का संग सुनो हर नाव सा संग अर्क गुण गाव साग संग नाम ते बिसर सा संग सर्पण निसर साग संग लगे प्रमीठा साधु कै संकट कर डिठा सा संग पै आज्ञाकारी सा संगत पै हमारे साग संग मिटे सबरो नान सा बिटे संजोग साग महिमा वेदना जाने जेता सुने तेता बखियान है साकू उपमा तै गुण तय दूर साकू मा रहे प्रभुर साक शोभा का नाही अंत साक शोभा सदा बेअंत साक शोभा उचे उचे साक शोभा समुचे मुचे साक शोभा साब ने आई नान सा प्रभेद न पाए सुलोक मन साचा मुख साचा सोए अब न पेख्या किस बन कोय नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदानर लेव जैसे जल में कमला ले ब्रह्म ज्ञानी सदानर दो जैसे सूर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी कह दुष्मान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह तीर्देख ज्योम श्रद्धा को खुद को चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी कह गुलाओ नानक ज्यो पाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैं नला के जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हो प्रगा जैसे तरियो प्रयाका ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान ब्रह्म ज्ञानी के नाय अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने सब ते नीचे ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानी चिन्ह प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल के रीना तमृत ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी के सब पर माया ब्रह्म ज्ञान दज बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन तय मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल युक्ता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानी ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे, महेश्वर नानी ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर है। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन मा है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पे, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए, अदाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी के गल ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानी, ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सबश्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुख जगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी

नेमक नेमक ठाकुर नमस्कार नानक अपर सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाई रसना परस मन में प्रे निरंजन दर्द पर तरिया रूप न पेख्या नेत्र साध गिटैल संत संग हेत करना सुना काहु के निंदा सबते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर रह मन के वासना मन ते डराए इंद्रिय जत पंच दोग तेरे अदना कोड़ में देखो ऐसा पर बैसनो सो जिसियो पर सो प्रसन्न बेसन की माया त्यो है पहन कर्म करत हो ने कर्म तस बैसनो का निर्मल धर्म काहु फल की इच्छा नहीं बाछा केवल भक्त कीर्तन संग राचाय मंथन अंतर सिमरन गोपाल सब पर होवत कृपाल आप दृढ़ नाम जपावे नानको बैसनो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्का संग मंत बिन सह सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मन खोवे तस भगवती कीमत उत्तम होय भगवंत की दयाल करे नत नीत मन तन रुपये विष्णु परीत हर के चन हृदय बसावे

मिला जिस लिखिया तर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास का नाम सत रामदास आत्म रात सनदरी आया दास संतन पाए तन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगा परवान अपने दास को आप कृपा करे ते दास को सब सो जी पर

तैसा स्वर्ण तैसियो सुमाटे तैसा अमृत तैसे विखाटे तैसा मन तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ताय साय जुगत नानक को प्रकैया जीवन मुक्त।

बृहस्पति कई कोट होय पुजारी कई कोट आचार बिहारी कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट परम परम उदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तापी सुर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कव का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नान करते कांत न पाव है कई कोट पय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट आवेगा तुमने कोर कई कोट पर दर्प खोय रहे कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया शर्माए कई कोट पर दे प्रमाण जद जद लाभ तत् तत् लगना नान करते के जाने करता रचना कई कोट सत जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखे सर्व पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पाणी बैसंतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट सस्यर सुर नखत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर सगल समग्री अपना सुतारे नान जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे कई कोट

परि कर्ण करामन कर्ण जो जो तत्पाव सोई हो खिनमे थाप थापन हारा अंत ने किच पारा बारा हुक्मे तार दर हावय हुक्मे अपजय हुक्म समावय हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अनगरंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नान समय रह सुमाई प्रपावे मान गत पावे प्रपावे ता पाथर त्रावे प्रपावे बिन सास राखे प्रपावे ता हर गुण पाख प्रपावे ता पद उदारे आप करे अपन बेचारे दुहा सुरया के आप।

सोई करे अनुदान दुख्या में रत दे जानत आपन आप बच पर मैं भूला दद सावे नुक में चार कुंड फिर आवे कर कृपा जैसे अपने

नानक दूजा वरना कोई कबू सत्संगत पावे सत्थान ते बहु न आवे। अंतर हो ज्ञान प्रकाश सन का नहीं विनाश मंथन नाम रत एक रंग सदा बसा पार ब्रह्म कै संग। ज्यो जल में जलाए खटाना त्यों ज्योति संग जो सुमाना मिट गए गमन पाए विश्राम। नानक प्रभु के सत कुरबान।

बृहस्पति जिसके अंतराध मांसो नरपातियो अश्वान्दो धन मध्यो बन वंशो वत विष्टा का जंत आपस को कर्मंत कहा वह जन्म रह जोन परमा वह तान पुमका जो करा गुमान सो मूर खंडा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानकिया मुक्ता के सुख पावे तनमंता हुए कर कृपावे तृण समान का संग न जावे बहुलस्कर मान को परे करे आस पर पवित्रता कहे बिना सबते आप जाने बलवंत खिन में हो जाए पशुमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तुझ करे खुआरी गुरु प्रसाद जहाँ कामटे अभिमान सो जनान दरगाह परवान कोट कर्म करे हो तारे शर्म पावे सगले बिर थारे अन्य तपस्या करे अहंकार।

माता के निर्मल सोए। जब लो जन्म चखत होए तब को सुख नाही कोए। जब जन्म करता तबला गर्भ जोन में फरता। जब तारा को बारी मीत तबला ने चल नाही चीत। जब लग मोमगन संग माए तब लम राय दे सुजाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे। सहस कटे लख कोट तावे द्रव्य नावे माया पाछे पावे। निक भोग भिख्या के करा न त्रुतावे खप खप मराए। बिना संतोख नहीं को राजे सब नम्र अर्थ वृथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए। बड़ पागे कसे प्राप्त होए। करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप। करण करावन करने हर इसके हाथ कहा विचार। जैसे जिस करे तैसा हुए आपे आप प्रभु सोए। जो कुछ कन्नो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूँ कै संग। भूजे देख्या करे बबे का पै अनेक मरे न बिन से आवे न जाए।

सत्याव सागिरा सब कुछ वर्त्य जिसका किया जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेला करने हार दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे बिड़पा के नानक जन सहे सलोक। तजो सियान पसुर जनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जायस्पति। मानव की टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक है भगवान जिसका दिया राय।

संजस्काम अनुमान जान्यान गुरु प्रसाद अपन आप सुजय तिसके जानो तृष्णा बुझय सा संग हर हर जस कह सर्व रोग ते ओहो हर जन रहत अंदर कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक उपर जन की आशा तुझे कटिया जम की पासा पार ब्रह्म के जिस मन भूख नान तिसे न लागे दुख जिसको हर पा मंच त्यावे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जब अपना कृपा करे सो सेवक को किस ते डरा जैसा सत्य सदृष्टाया अपने कार दुनिया सुमाया सोद सोद सोद सिद्धिया गुरु प्रसाद सब जय जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोई असूल नेक जन्म नेक तुमर अपन चलता भी करे आवन जम दृष्ट दृष्ट आज्ञा करी धारी सब श्रेष्ठ व्यापे आप सगल में आपन जुगत रह थाप थाप अविनाशी ना ही कुछ खन तारण तार्यो ब्रह्मांड लाख पे प्रभु प्रताप आप जय पैता नान जाप जन प्रभु जाता सो सो बावन सगल संसार उदरे जन मंत्र प्रभु के सेव सगल उदाहरण प्रभु के सेव दुख विसारण आपे में ले कृपाल गुरु का सब जब पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जस नौ कृपा करह बड पागे नाम जत पाप है विश्राम नाने तिन पुर को उत्तम कर मान जो किछ कर सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभा हो सोए करने हार पछाण सोए प्रभ के आगे जन मीठ लगाना जय

नानक तिस बलिहार अस्पति टूटी गानन हार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जसवन माहे जस व्यर्था कोई नाहे रे मन मेरे सुदा हरदा पवना से प्रभ आपे आपन किया कछु ना होए जसो प्राणी लोचे कोई तस्बन नाहे तेरा किस काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाहे मोहे प्रभ के जो सगल कट सो है तन मनता हो क्या को गर्भ जा सब को सिद्धा दिया दरवे असुरा देखो कहा वह प्रभु की कला बिना कहता वह देखो है वह दत्तार्थ जनार जाने गावार जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोजन सदा रोग जो मंदिर को मोह थम थम त्यो गुर का शब्द मन असुथम मन जो पखान नव चढ़ तर प्राणी गुर चल नक्त निस्तर जीवंत कर दिव्य प्रकाश गुरु दर्शन देख मन हो विगास जो महाउद्यान में मारे पावे तुम साधु संग में जो प्रटावे तुम संतन की बात छो तुर नानक अर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिल्लाए पुर लिखे का लिखिया पाई दुख सु प्रभु देवन हर अवर त्याग तुम तुसाए चितार जो कछ करे सोई सुख मान।

बस हो जाने पर अपने का हुक्म बचाने तिथि महिमा कौन बखाने तिथका गुण का एक न जानो आठ पैर प्रभु सहजू रखो नाने से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तन अपना तिन जन दे जन जन अपना प्रभु बिछाता सर्व सो जन सर्व सो का दाता तिथके शरण सर्व सुख पावे तिथके दर सब पावे टावे और श्यान सगल चार ते जन के तु से बाला गावन जान हो वे तेरा नान ते जन के पूजो हो साध पैरा श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसका संग सुख उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदि सतगुर सिख करा प्रतपाल सेवक गुरु सदा दयाल सिख की गुर दुर मत मल हिरै गुरु बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिखे बंधन काटे गुरु का सिख विकार ते हटे सतगुर सिखो नाम धंदे गुरु का सिख बड़ भागी है सतगुर सिखा हर पर सुवारे नानक सतगुर सिखो जी नाल सुमारे गुरु के ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सहे आपस को कर गो छना जनावे हर हर नाम सत जावे मन बिच सतगुर के पास सेवक के कार्य राज सेवा कर तो इन काम तिलको होर प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जो साफ करे नानक सो सेवक गुर की मात ले बीस विषय गुरु का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गात जाने सो सतगुरु सुरदय हर नाव अनक बार गुर को बल जाओ श्रवण धान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म कैप नहीं कज परम सहस्यान लेना जाइए नानक सगुरुड़ पागी पाइये सफल दर्शन पे कत पौनीत पार स्वत चरण का निर्मल रीत पेट संग्राम गुरु रव पार ब्रह्म की दुर्गा गवे सुनकर वचन करना गाना मन संतो का तुम पतिया ने पूरा गुरु आख्यो जाका मंत्र अमृत फेंके हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिलय मिलाए जय वैकुंठ सचा नेक सत पुरु पूर्ण बाबे का बोल न पछु प्राणी अगम अगोचर प्रभु निर्वाणी निराहा निर्वैर सुखदाई ता की कीमत किने न पाए अनेक भगत बंधन निज कर चरण कमल हृदय समर सर परे हारी सतगुरु अपने नानी जिस प्रसाद आता प्रभु अपने एहो अरत पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सोए इस पुर का नाय कदे बना जाके अमर भक्त गुण ता साठ पैर हर का नाम ले सच दे सेवक को दे मोह माया के संग न ले मन में रखे हरे हरे एकांत कर दीपक प्रगास से नानी परम दुख तैते न से तब तुम्हारे ठंड वरताई अनंत व्यथ को नाठे पाई जनमन के मिटे अंध से साधु के पूर्ण बुद्ध से पहुँ चुका निरपो है बस सकल ब्याज मंत्र करने से जी का सोधन कृपा दारी सा संग जपना अमरारी स्थित पाए चुके ब्रह्म गावे न सुनना कर जस सर्व निर्गुण अवसर गण पियो ही कला तार जिन सगली मोहि अपने चिर प्रभा बनाए अपने कीमती अपे पाए बंधु जाना ही कोय सर्व निरंतर को सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पै प्रगा साध के संग रच रचना अपनी कल तारी इनक बार नानक भले हरि सलोक सा

छिदन लगत को केस जय ज्योत स्वरूपे ज्योत संग समावै तै किस पोखा मंत्र बतावै कण क्रामन करने हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाए तब कवन माई बाप मित्र सुत भाई जय सर्व।